0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी भगवान से कुतु से कर, स्वामी भगवान से उतानु से कर, स्वामिनी भगवान से नवत वडिन से कर।
0: एहिं प्यानिनी उन्वान से गे मरण्या तुत्तान्या सीपत कर्मिन जीवन दायक फूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तपयो बट पुद करम ओबाहम सिटमिन ओबट सेवे खरान्नट अपसुदुसान वाचिन।